0: எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में सम्पन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई

0: दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कारेकाल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 10th edition of the Congress has brought together global technology leaders, policymakers, industry experts, startups, investors and innovators to explore emerging opportunities. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day is being celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force Infallible, Impervious and Precise. In his message through Akashvani yesterday, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, said the Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment. He said last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations, demonstrating its capability and capacity to defend the country's sovereignty. The Seva Sankalp Bike

0: எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது சம்ஸ்கிருத செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிஜா ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तरजनसेवां कुर्वता पञ्चविंशतिवर्षाणि पूर्णानि कृतानि. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधितवान्. सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शीनीतिभिः अथ कठिनपरिश्रमेण च सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति. विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमानप्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति.
2: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा. सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके.
1: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र इण्डिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशमसंस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति. ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसञ्चारविभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इण्डिया इत्यनेन च संयुक्तरूपेण आयोज्यते. अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसञ्चारस्य अङ्कीयसम्पर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते. सहैव वैश्विकस्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञानविनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
0: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु. एक्स्पटले @AIR News हिन्दी अथ इन्स्टाग्राम् माध्यमे AIR News अलर्ट्स् इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु.
1: वस्तु सेवा कर परिषदः 75वां उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते. वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवाकर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा

0: ஷனேஹ பந்தஹ, ஷனேஹ கந்தஹ, ஷனேஹ பர்வத லங்கனம், ஷனேர வித்யா, ஷனேர விருத்தம், பஞ்சே தானி ஷனேஹ ஷனேஹ. அர்த்தாத் ராஸ்தா தீரே தீரே தய கரே, சாதர் தீரே தீரே சிலேன், பஹாட் தீரே தீரே சடேன், வித்யா தீரே தீரே பிராப்த கரே, ஔர் தன் பி தீரே தீரே கமாயே. யே பாஞ்சோ காரிய ஜல்தபாஜி மே நஹி பல்கி தைரிய ஔர் நிரந்தர பிரயாஸ் சே ஹி பூரே ஹோதே ஹேன். इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर. सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार.
1: नमस्कार मुकेश, एंड आई मस्ट से दैट इन द एज ऑफ स्पीड एंड टेक्नोलॉजी दीज वर्ड्स ऑफ विजडम इनडीड bring to our lives and mind
0: Bilkul.
1: some calm and some amount of soothness too.
0: Ji.
1: With this good hope and positivity, we begin our today's news magazine program, Aaj Savere,
0: Ji.
1: where we shall talk about national and international news. And my dear listeners, the next 30 minutes are going to be packed with lot of information,
0: Bilkul.
1: lot of entertainment. There's going to be Metro City updates. And of course, towards the end of the program, Mukesh and myself together shall flip the pages of history to see what makes 8th of October so special.
0: Ji.
1: So Mukesh, without much ado, let's begin the program with the news headlines.
0: Ji, bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का उद्घाटन करेंगे. ये आयोजन शनिवार तक चलेगा. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच भी उपलब्ध कराएगा. INC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार.
1: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 5-pronged

0: proposal covers process reforms, structural reforms, ease of living and doing business, exports of services and e-commerce. Some of the key changes proposed involve automatic invoice matching between buyers and sellers, reducing paperwork around claiming input tax credits, reducing the number of times small taxpayers have to file returns, and removing multi-state registrations for small businesses. The last 56th meeting of the GST Council was held in September last year. During the meeting, the Council had approved the rate rationalization with a focus on the common man, labor-intensive industries, farmers and agriculture, health and key drivers of the economy. Mukesh, I feel that these kind of entrepreneurs from the government would go a long way regarding ease of doing business, ease of ensuring entrepreneurship in the country.
1: बिल्कुल, ये तो अभी सरकार का भी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक मुख्य उद्देश्य है कि देश में कह सकते हैं कि हम नवाचारों को आगे बढ़ाना,
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें ये जो जीएसटी की परिषद की जो काउंसलिंग की जो बैठक होने वाली है एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। और इसके बाद अब सरबजीत बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबर का, तो भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है।
0: A massive Russian strike killed 25 people and injured 100 others in Ukraine yesterday. Russia launched 70 missiles alongside dozens of attack drones targeting Kyiv and a dozen other Ukrainian regions. The heaviest toll occurred in Prolake in the northern Chernihiv region, where a missile obliterated a five-story apartment building, killing 19 people. According to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Ukrainian forces intercepted 44 missiles and suppressed 117 drones, though they were unable to fend off the entire barrage. Ukrainian President condemned the assault, describing it as a deliberate demonstration of violence. Officials emphasized the urgent need for additional air defense systems and ammunition packages to better intercept incoming ballistic threats. Earlier, Zelensky said US negotiators had proposed holding a trilateral meeting involving Ukraine and Russia at the technical level by the end of October, with Kyiv expressing readiness to participate.
1: Jee. अब बात मौसम की, तो मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2-3 दिन तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी आज आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर बात करें असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आज इन प्रदेशों में आंधी तूफान की स्थिति देखने को मिल सकती है।
0: एंड आफ्टर दैट अपडेट ऑन द वेदर, लेट्स टेक अ पीप इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इन टेबल टेनिस, इंडियन पैडलर्स मनुष शाह एंड दिया चिताले क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मिक्स डबल्स पेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ WTT ग्रैंड स्मैश आफ्टर बीटिंग रोमेनियाज एडवर्ड इनुस्क्यू एंड बनेट स्कोर्स 3-0 एट द चाइना स्मैश इन बीजिंग येस्टरडे। द फिफ्थ सीडेड इंडियन ड्यूओ वन द क्वार्टर फाइनल 11-9, 13-11, 11-3 टू सिक्योर अ प्लेस इन द लास्ट फोर। However, Manav Thakkar exited the men's singles in the round of 32 after losing 0-3 to 7th seed Alexis Lebrun of France. In women's double, Diya Chitale and Yashaswini Gorpade suffered a narrow 2-3 defeat to China's Gao Yuxin and Jing Zulin in the round of 16.
1: To shrotaon, ye the ab tak ke kuch mukhya samachar. अब कार्यक्रम आज सवेरे में रुख करते हैं महानगरों की खबरों का, तो शुरुआत क्यों ना करें सरबजीत दिल्ली से।
0: जी,
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए 3 नई पहलें शुरू की हैं। इनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस सेवा, सरकारी पशु चिकित्सालय में व्यापक ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच और 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों तथा परिषद सदस्यों द्वारा गोद लेने की व्यवस्था शामिल है। परिषद की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का नाम जोड़ने, घर पर जन्म

0: मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र में सुधार जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और श्रोताओं, इससे पहले जब हमने भी बात की थी मुख्य समाचारों की, तो उसमें आपको बताया था कि इधर दिल्ली में आज जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हो रहा है, तो इससे जुड़ा एक यातायात परामर्श भी दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी किया है। तो इस परामर्श के अनुसार द्वारका स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो आज हो रहा है, उसके मद्देनज़र आज सुबह 9:35 से 10:10 तक कापस हेड़ा सुरंग से द्वारका और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की ओर भारी वाहन, वाणिज्यिक वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सुबह 11:00 से 11:40 तक धूलसिरस से कापस हेड़ा सुरंग की ओर जाने वाले भारी और वाणिज्यिक वाहनों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा।
1: Well, let's move on to the update from Chennai. And this is some good advice and, you know, heartening news for book lovers. The state government has proposed to transform libraries on par with the vision outlined in the policy.

0: कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मदरसा शिक्षा आयोग का स्कूल सेवा आयोग में विलय कर दिया गया है। अब मदरसों में शिक्षकों की भर्ती स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से होगी। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा कि इस कदम से मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। हाल ही में राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले आलिया विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सरबजीत के साथ। अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उधर अगर मुंबई की बात करें तो वहां भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो शहर में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल आप सुनाइए सरबजीत अपने श्रोताओं को।
1: वेल मुकेश, चेन्नई इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु forecast to experience partly cloudy sky, the minimum temperatures around 21 degrees, maximum may go up to 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 22 degrees to a maximum of 34 degrees Celsius.
0: जी, और श्रोताओं, अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। तो 1919 में आज ही के दिन अहमदाबाद से यंग इंडिया पत्रिका का पहला अंक जारी हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने संपादकीय भूमिका में संभाला।
1: 1921 ऑन दिस डे इंडियन नेशनलिस्ट कॉल्ड अ जनरल हड़ताल और अ स्ट्राइक ऑन द अराइवल ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स इन बॉम्बे एज पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
0: और 1932 में, यानी कि आज ही की तारीख को, इस बरस भारत की आकाशीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए वायु सेना का गठन हुआ था। इस वर्ष वायु सेना दिवस की थीम है इंडियन एयर फोर्स इनफेलेबल इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। आइए सुनते हैं वायु सेना दिवस पर यह खास रिपोर्ट।
2: वर्ष 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है।
3: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
2: नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना भारतीय आकाशीय सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रही है। युद्ध की स्थिति में शौर्य पराक्रम की पटकथा लिखनी हो या प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के समय आसमान से मानवीय सहायता पहुंचानी हो, भारतीय वायुसेना के जवान हर मोर्चे पर मौजूद रहे हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कल वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है।
4: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर।
5: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
2: 1947-48, 1962, 1965, 1971 और 1999 का करके ऑपरेशन मेघदूत, कैक्टस, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया ने हर बार भारतीय वायुसेना की नई धमक देखी है। समाचार कक्ष से

0: dream. From four aircrafts to a modern air power, India has truly learned to touch the sky with glory.
1: जी, श्रोताओं, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिन पर जो शख्सियतें हमें इस दुनिया में आई या हमको अलविदा कह गई. तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं विश्वनाथ पाटेकर यानी नाना पाटेकर की. उनका आज सुबह लगभग 5:20 पर हृदयाघात से निधन हो गया. उन्हें बचाने के लिए नाना पाटेकर को 45 मिनट तक लगातार CPR दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. श्रोताओं, कौन थे नाना पाटेकर और क्यों थे वे खास? उनका फिल्मी सफर क्या रहा?
2: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी. कौन समझा उसकी बात को? किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है. लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों

0: जी, क्या खूबसूरत नगमा है कि जिसे राम की धुन है लागी। ऐसे ही कुछ शख्सियत के धनी थे नाना पाटेकर। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड़ जंजीरा में हुआ। वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे। उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेताओं में से गिना जाता है।
1: मैं इंडस्ट्री का हूं नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, और बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, बीच में हम रहते हैं।
2: That deep voice, that great acting.
0: जी.
2: Yes, listeners, today we have lost a great, great artist. All our tributes to the great actor and filmmaker, Nana Patekar.
0: जी बिल्कुल। और आज 8 अक्टूबर वो तारीख है जो हिंदी साहित्य के अमर सितारे मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि के रूप में भी याद की जाती है। 1936 में जब धनपत राय श्रीवास्तव यानी प्रेमचंद इस दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने पीछे छोड़ दी एक ऐसी विरासत जो आज भी समाज के आईने की तरह चमक रही है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम सामाजिक व्यवस्था का सशक्त चित्रण करने के लिए जाना जाता है। गोदान वर्ष 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी एक किसान और उसके परिवार के इर्द गिर्द मंडराती है। आइए सुनते हैं इस कालजयी उपन्यास की कहानी का सार, जिसे लिखा और अपनी आवाज से सजाया है हमारी सहयोगी पायल शर्मा ने।
3: गोदान की कहानी है एक गरीब किसान होरी की। होरी की दिली ख्वाहिश है कि उसके घर में भी एक गाय हो। होरी कर्ज लेकर गाय खरीदता है, लेकिन परिवार की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करवट लेती हैं कि ये छोटी सी खुशी भी उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ बन जाती है। होरी का भाई हीरा ईर्ष्या में गाय को जहर दे देता है और गाँव छोड़कर चला जाता है। गाय की मृत्यु के बाद पुलिसिया कार्रवाई और पंचायत के दबाव तले होरी पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। इसी बीच होरी का बेटा गोबर भोला की बेटी जुनिया के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि जुनिया गोबर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और गोबर इस दौरान शहर छोड़कर बाहर चला जाता है। गांव के सामाजिक दबाव के बावजूद होरी और उसकी पत्नी धनिया जुनिया को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। इसके लिए भी पंचायत होरी पर जुर्माना लगा देती है। एक ओर जमींदार, महाजन और पंचायत का दबाव है तो दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारियां। कर्ज बढ़ता जाता है और होरी की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जाती है। अपनी जमीन बचाने और परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए उसे कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उपन्यास में गांव के साथ साथ शहर का जीवन भी दिखाई देता है। मेहता मालती, खन्ना और गोविंदी जैसे पात्र समाज के दूसरे वर्गों और बदलते सामाजिक मूल्यों को सामने लाते हैं। इस तरह गोदान केवल एक किसान परिवार की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि उस समय के पूरे सामाजिक ताने बाने का चित्रण करने वाली कालजयी कथा बन

0: होती है।
1: होरी जब मृत्युशैया पर होता है तो पंडित दाता दीन और अन्य लोग धर्म के नाम पर उसकी पत्नी धनिया से गोदान यानी गाय का दान करने के लिए कहते हैं। धनिया होरी के ठंडे पड़े हाथों में सूतली बेचकर बचाए गए मात्र 20 आने मतलब उस समय के लगभग 125 रखती है और कहती है, महाजन घर में न गाय है न बछिया और न पैसा, बस यही कुछ पैसे हैं और यही है इसका गोदान। और वो पछाड़ खाकर गिर जाती है। इसी अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक दृश्य के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। गोदान हमें बताता है कि गरीबी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं होती बल्कि उसके साथ सामाजिक दबाव, कर्ज, परंपराएं और असमानताएं भी जुड़ी होती है। होरी और धनिया की कहानी आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसमें एक आम इंसान के सपनों, संघर्ष और जीवन की सच्चाई दिखाई देती है।
0: Listeners, we are paying tributes today to Jay Prakash Narayan. Today is his death anniversary. Freedom fighter, social reformer and political leader. Jay Prakash Narayan actively participated in India's freedom struggle and later became known for his strong commitment to democracy and social justice.
2: जी बिल्कुल, माँ भारती के वीर सपूत लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश को झकझोर दिया जिससे भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जन ज्वार उमड़ पड़ा। इस आंदोलन ने उन्हें समाज सेवा के लिए लोकनायक की उपाधि दिलाई। नारायण जी महात्मा गांधी के भी कई आंदोलनों में शामिल रहे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान किया। उस दिन मानो पूरे मैदान में उनका नारा गूंज उठा था, जो नारा कुछ यूं था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी नारे से उन्होंने विश्व स्तर पर अमर बना दिया। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: Paying tributes next to Admiral Ram Das Katari. Today is his birth anniversary. In 1958, Admiral Ram Das Katari became the first Indian to serve as the chief of the naval staff, marking an important milestone in the journey of the Indian Navy. At a time when India was strengthening its own defense institutions, Admiral Katari helped lay the foundations of an increasingly Indian-led naval force. His career reflects the transition from a colonial military structure to a self-reliant Indian defense establishment.

श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है केदारनाथ साहू की। वे भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। उन्हें जनजातीय परंपरा से निकला नृत्य जो है छऊ, उसके लिए वर्ष 2005 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। 1981 में इस नर्तक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब बात करते हैं, आज जिनकी पुण्यतिथि है वो गहरी और दमदार आवाज़ के धनी अभिनेता राजकुमार की। उन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के इस जानी की जिंदगी संघर्ष, सफलता और अनोखे अंदाज की मिसाल रही। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। जब बलदेव राज चोपड़ा की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने फिल्मों में आने का न्योता दिया। फिल्मी सफ़र की शुरुआत अगर हम उनकी बात करें तो 1952 में रंगीली फिल्म से हुई, लेकिन असली धमाका 1957 के में महबूब खान की महाकाव्य नाटक मदर इंडिया से हुआ। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

1960 में आई किशोर साहू की रोमांटिक ड्रामा दिल अपना और प्रीत पराई बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, खासकर इस फिल्म का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, ये थे राजकुमार, जिनके ऊपर कई ऐसे नगमे फिल्माए गए जो आज भी दर्शकों के दिलों को झंकृत कर रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश और सरबजीत को यहीं संपन्न करने की।
1: Listeners, thank you for tuning in. Stay tuned for Hindi News Bulletin followed by Morning News in English. Have a great day.
0: Namaskar. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
3: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
4: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में

0: भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटेडी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटेडी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह

0: हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनकी आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनुष शाह और दिया चिताले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை. இந்த அலைவரிசையில் இன்னும் செல்ல நொடிகளால் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से

0: जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम चार नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
2: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर,
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. The event showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries.

0: is powered by technology, innovation and connectivity, creating opportunities at scale, empowering every citizen. It is also a vision, ladies and gentlemen, where technologies, innovations and products created here travel across the country, reaching out to the world. And it is this vision of Prime Minister Modi that finds its strongest expression in the theme of IMC 2026, Scale Without Boundaries. And this becomes the basis of our conversations, the basis of our digital future.
1: पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर में वह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
3: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों, स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
4: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती संगठन ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिम तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 नए क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वो पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया।

0: अधिकारियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को बेहतर ढंग से रोकने के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों और गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि अमरीका वार्ताकारों ने अक्टूबर के अंत तक तकनीकी स्तर पर यूक्रेन और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन ने इसमें भाग लेने की तत्परता व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात आपितजान में कोटे दी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिराहिमा ओतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आपितजान में हुई बैठक डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। उधर मानु शाह और दिया चिताली ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानु और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई है। क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने रोमानिया की जोड़ी को हराया। ICC ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। T20 बल्लेबाजों में ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे, जबकि तिलक वर्मा 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में अक्षर पटेल 7वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में 2 हवाई अड्डों पर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। हमले में 3 लोग मारे गए। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रियाद को निशाना बनाकर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को विफल किया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। यूक्रेन में रूस के भीषण हमले से 25 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज कैरोलिना मोचोवो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा और मानु शाह और दिया चिताली ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ICC ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. Tensions in the West Asia escalate after Houthis attack 2 airports in Saudi Arabia, killing 3. Saudi-led coalition intercepts ballistic missile targeting Riyadh. Massive Russian strike in Ukraine kills 25 people and

गुना बड़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी मंच पर 2024 में हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की मौजूदगी देखी। तब हमने डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर बात की थी और पिछले साल इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया पर चर्चा की थी। आज भारत टेलीकॉम सेक्टर में जहां पहुंचा है, उसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है। इसलिए मैं आप सभी का विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस साल आप सभी ने इस समिट में अपने मंथन के लिए विषय तय किया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, हर सीमा से परे जाकर विस्तार। मैं आपको भारत के अनुभवों से बताना चाहूंगा कि हमने कैसे स्केल विदाउट बाउंड्रीज के सपने को जीकर दिखाया है। साथियों, जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की चर्चा होती है, स्पेक्ट्रम पर डिबेट चलती है, टावर्स की रीच की, स्पीड की बातें होती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी अहम टूल बनकर सामने आया है और ये हमारे डिजिटल इंडिया विजन के कोर में रहा है। साथियों, आज हम सुनते हैं कि भारत में डेटा सस्ता है, मोबाइल फोन सस्ते हैं, मोबाइल फोन यूजर बेस इतना एक्सपेंड हो गया है। ये अपनी जगह सब सच है, लेकिन ये हुआ कैसे और ये सब किया क्यों गया, ये जब हम समझेंगे तो सभी को भारत का फोकस एरिया एकदम क्लियर होगा। साथियों, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज बनती जा रही थी, यानी जिसके पास साधन है वही आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता था। भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। डिजिटल इंडिया अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी और इसके सेंटर में मोबाइल फोन को लेकर के आए हैं। ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रयास था। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में हर जरूरी फॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया। हमने फोकस किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बने। साथियों, ऐसे हर प्रयास से मोबाइल फोन और डेटा तक भारत के आम नागरिक की पहुंच और सुलभ हो गई और आज ये भारत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सब कुछ रुक गया था, लेकिन भारत में दफ्तर चलते थे, बैंक चलते रहे, पढ़ाई चलती रही। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम

सिस्टम के कारण हुआ। मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर सुदूर गांव गरीब के बच्चे भी क्वालिटी नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सबकी पहुंच में आ रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट और ज्यादा पता चलता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत भाषा और भूगोल हर प्रकार से डाइवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डाइवर्सिटी को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानी कुछ भी काम करना हो, सरकारी सर्विस लेनी हो, तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। आज सरकार के सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है। सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे, बैंक अकाउंट में पहुंचे। और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनके मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है।

वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था। यानी साथियों, मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है। और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है। साथियों, बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है। रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ। इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है। इससे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई है। आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए, एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के युवाओं की है। Tier 2 और Tier 3 शहरों का युवा भी इससे जुड़ा है। अब वो गेम से जुड़ने के साथ ही ई स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहा है, गेमिंग कंटेंट बना रहा है और नए गेमिंग बिजनेसेस खड़े कर रहा है। यानी भारत में मोबाइल फोन आज गेमिंग कंसोल भी है और क्रिएशन का स्टूडियो भी बन गया है। साथियों, भारत में हुई टेलीकॉम क्रांति ने यही बदलाव कंटेंट की दुनिया में भी ला दिया है। बेहतर फास्ट कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा ने अनेक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया और रीजनल ओटीटी को गांव कस्बों तक पहुंचा दिया है। इससे भाषा से जुड़ी जो समस्याएं आती थी, वो बंदिशें थी, वो भी दूर हो गई है। यानी केवल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी इंडस्ट्री ही भारत में आज हजारों करोड़ रुपए की हो गई है, जिससे लाखों लाख लोगों को कमाई हो रही है। यानी मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।

जब मैसेज आए तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक, जब पेमेंट हो तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है, जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है, और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते, वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा, और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है, अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो

0: टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है, उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएनसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

0: बहुत
1: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். மீண்டும் மெல்லிசை பாடல்கள் நாளை பிற்பகல் 12:40 ஒலிக்கும்.
1: எங்கு பிறந்த போதும், என்ன உண்ட போதும், எதை உடுத்திய போதும், சிந்தனை ஒன்றே. இந்தியா. பாரதம் எங்கள் சுவாசம்.
0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल

0: बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
2: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: The 57th Goods and Services Tax GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi to discuss policy reforms to resolve disputes and improve the flow of input tax credit with the aim to reduce the time and cost of compliance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Karnataka CM DK Shivakumar, Jammu and Kashmir CM Umar Abdullah, Haryana CM Naib Singh Saini and finance ministers of states and union territories are also attending the meeting. Sources in the finance ministry said the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Barinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema. In a social media post, the Prime Minister said, Nana Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and played characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Air Chief Marshal AP Singh today highlighted the Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors

0: டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டி ஹெல்த் ஃபோர்காஸ்ட் ஹெவி ரெயின்ஃபால் கண்டிஷன்ஸ் ஓவர் கேரளா, மாஹே, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கராய்க்கால், உத்தராகண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் சிக்கிம் டியூரிங் த டே. நவ் பிஃபோர் வி எண்ட் த புலட்டின் த ஹெட்லைன்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன். Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 550,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of double speak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी. उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची. वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा. सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया. दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन. भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया. कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता. और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है. 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी. इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है.
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है. हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है. इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है. हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है. श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी.
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है. कोविड के दौरान July 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए. अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके. यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है.
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की.
3: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था. उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण

0: भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेते निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल

0: करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
2: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, अब काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
4: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं

0: उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
1: நேயர்கள் இனி கேட்கலாம்.
3: சேர்த்து வைத்த செல்வம்.

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் திரைகாணம் நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन

0: उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन है। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिक स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को समाहित करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों को वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। पारादीप तट पर सारिक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक PTM, तटरक्षक पदक TM से सम्मानित भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारादीप तट पर 12वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान सारिक्स 26 का अवलोकन किया। हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रीको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरू मानेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said the platform of Indian Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity.

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कार्यालय में प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के आधार पर निजी सहायक के दो पद भरे जाने हैं। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.cca.gov.in। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंध संस्थान प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर या समकक्ष पद धारण करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट nerivalm.gov.in। एम्स देवघर झारखंड एक स्वायत्त राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत स्थापित नए एम्स संस्थानों में से ये एक है। इसका उद्देश्य देश में तृतीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। एम्स देवघर के विभिन्न विभागों में मेडिकल एवं नर्सिंग फैकल्टी पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्राध्यापक 21 पद, अतिरिक्त प्राध्यापक 5 पद, सह प्राध्यापक 17 पद, सहायक प्राध्यापक 25 पद और नर्सिंग सह प्राध्यापक अथवा रीडर 1 पद। कुल मिलाकर 69 पद उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें। वेबसाइट है www.amsdevghar.edu.in। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों चेन्नई, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय अधिकारियों के पद तथा मुंबई में एक अपर क्षेत्रीय अधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 का अंक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी तथा एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी। कुल 2 पद उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंडों, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.amsmangalagiri.edu.in। वेबसाइट का पता फिर से सुनिए www.amsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय

0: और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Vaishnavi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 50,50,000 base stations.
0: वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा।
1: सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू फॉर्म कमिटी टू कर्ब अनएथिकल फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन।
1: इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ डबल स्पीक ऑन टेररिज्म, सेज इस्लामाबाद कैन नॉट ग्लॉस ओवर सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स।
0: और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we pay tributes to Nana Patekar.
2: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां हों।

0: Yes, and some voices stay with us long after the screen fades to black. Some performances become memories that generations carry with them. Today, Indian cinema bids a deeply emotional farewell to one such remarkable artist, Nana Patekar.
1: खबरों के अनुसार हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गोवा स्थित घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा के करीब 5 दशक लंबे एक असाधारण और यादगार सफर का अंत हो गया।
0: नाना पाटेकर वाज नेवर जस्ट एन एक्टर, ही वाज अ परफॉर्मर हु ब्रॉट रॉ इमोशन, इंटेंसिटी and an unmistakable honesty to every character he portrayed, whether on the big screen or on stage, he had a presence that was impossible to ignore.
1: उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव और किरदार को जीने का उनका तरीका, इन सब ने मिलकर नाना पाटेकर की एक ऐसी पहचान बनाई जो भारतीय सिनेमा में बिल्कुल अलग और अनोखी थी। गंभीर और भावुक भूमिकाओं से लेकर खलनायक, पुलिस अधिकारी, सैनिक और कॉमेडी किरदारों तक उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कई रंग दिखाए।
0: नाना पाटेकर वाज नेवर द कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरो एट अ टाइम व्हेन हिंदी सिनेमा ऑफन सेलिब्रेटेड द क्लीन कट चॉकलेट बॉक्स लीडिंग मैन। पाटेकर अराइव्ड विद अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रेजेंस, रगेड, इंटेंस, अनमिस्टेकेबली रियल।
2: मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो सुनना है?
3: देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है, लेकिन देखो मेरी जान, ये बम्बई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है, अब उनका एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा। चलो एक एक रुपया निकालो, चलो चलो चलो चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा, यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है।
1: नाना पाटेकर के चेहरे की कठोरता, आवाज की गूंज और संवाद अदायगी में ऐसी ताकत थी कि वे बेहद उग्र किरदार को भी पूरी तरह विश्वसनीय बना देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्हें कभी किसी तय सांचे में ढलने की जरूरत नहीं पड़ी।
4: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम,

0: तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम।
1: Let's go ahead and listen in to this report.

0: एक कलाकार जो कभी अभिनय नहीं करता था बल्कि उस किरदार को जीता था। 1978 में गबन से शुरू हुआ सफर परिंदा का अन्ना सेठ बना, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: अन्ना को डराता है?
2: यही है वो आदमी, मैं जानता हूँ यही है वो।
1: तो फिर जाओ, जाके ढूंढो, जाओ। नहीं नहीं अब्दुल, कहीं तो हिंदुस्तान जिंदा है, उसकी इज्जत कर। जा इंस्पेक्टर, सबूत ला, गवाह ढूंढ, फिर ले जाना, मैं खुद चलूंगा तेरे साथ, जा।
0: फिर आया क्रांति वीर का प्रताप, जिसने पूरे देश को जगाया।
3: लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
0: 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री, इतने सम्मान मिले पर नाना पाटेकर हमेशा जमीन पर रहे। फिल्म अग्नि साक्षी में विश्वनाथ के नेगेटिव रोल को जिस बखूबी से उन्होंने निभाया, वो आज भी लोगों की जुबान पर है।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो?
5: अरे साहब, मैंने आपको इन्वाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है।
4: तो कौन सा तीर मारा? Come on, party's over, go to sleep now.
0: उनका एक डायलॉग था, जिंदगी में कुछ बनना है तो इंसान बनो। आज वो इंसान चला गया, पर उसकी आवाज, उसका गुस्सा और उसकी हंसी हमेशा हमारे बीच रहेगी। अंगार, तिरंगा, अभय, खामोशी, गुलामे मुस्तफा, वजूद और युग पुरुष जैसी फिल्मों में किए गए उनके अभिनय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिग्गज नेता के बारे में बस ये कहना चाहेंगे कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारी शहर को वीरान कर गया। आकाशवाणी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।
6: फ्रॉम प्लेइंग विलियंस टू प्लेइंग हीरोज, पाटेकर क्रॉस द डिफिकल्ट लाइन दैट फ्यू एक्टर्स कुड। इन परिंदा ही गेव अस द टेरिफाइंग अन्ना सेठ, अ साइकोटिक क्राइम लॉर्ड हुज मैनियकल लाफ बिकेम अनफॉरगेटेबल।
1: कल सुबह
2: एक पुलिस वाले का खून हुआ है ना सेठ, उसका एक रफ हमको फांसी का फंदे तक पहुंचा सकता है।
1: तो फिर उसे चुप करा दे।
2: वो मेरा भाई है।
1: तो क्या? न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा।
7: धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल, जा।
2: नहीं अब्दुल, मैं समझाऊंगा उसे, अन्ना सेठ, मैं समझाऊंगा।
1: चल, चल। मेहनत से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा एक बच्चे की नादानी की वजह से मिट्टी में मिल सकता है? मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है किशन। करण को चुप रहना होगा या जाना हो।
8: और कुछ ही साल बाद प्रहार द फाइनल अटैक में वे बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने मेजर प्रताप चौहान का किरदार निभाया, एक अनुशासित, ईमानदार और अपने सिद्धांतों पर अडिग सैनिक। खास बात ये थी कि नाना पाटेकर ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था, यानी उनके भीतर का कलाकार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि कहानी कहने और उसे पर्दे पर उतारने की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही मजबूत थी।
9: मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग।
6: Then came Ab Tak Chhappan as Inspector Sadhu Aghase. Pattekar created another iconic character, a police officer so consumed by his mission to eradicate crime that the line between duty and obsession began to disappear.
10: Ghar pade, bura ka kya hua?
11: Sir, jahan tak mujhe pata chala hai, bura aapke bete ki maut ke liye zimmedar nahi hai. Us din wo Mumbai mein
10: jo bola wo karne ka, yahan sirf mera order aur dimag chalega.
11: दिमाग ठकाने होगा तब चलेगा ना
10: सर।
11: सर आप सीनियर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ
10: जो बोलने का है वो सामने बोलने का, पीठ पीछे नहीं।
8: अभिषेक, उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे कोई किरदार निभा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे वे खुद साधु अघाशे बन गए हों। यही नाना पाटेकर की सबसे बड़ी ताकत थी। वे दर्शकों को ये भूलने पर मजबूर कर देते थे कि पर्दे पर कोई अभिनेता है, सामने सिर्फ वही किरदार रह जाता था और दर्शक उस पर पूरा विश्वास करने लगता था।

0: And what's more, Vaishnavi, his journey had begun much earlier with films like Gaman and his memorable appearance in Meera Nair's Salaam Bombay. From there came a remarkable run of performances in films such as Krantiveer, Tiranga, Rajniti and Welcome.
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे जुबान ऐसी बार आएगी आंखें बार आएगी थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें कुछ नहीं तुम्हारी
2: और शायद नाना पाटेकर को सबसे खास बनाने वाली बात यही थी कि उस गुस्से तेवर और तीव्रता के पीछे एक बेहद संवेदनशील अभिनेता भी मौजूद था जो खामोशी के जरिए भी उतना ही कह सकता था जितना किसी लंबे संवाद के जरिए
0: इन संजय लीला भंसाली's खामोशी ही प्लेड जोसेफ ब्रगांजा अ डेफ म्यूट फादर एंड अ हस्बैंड एंड देयर आर नो फायरी मोनोलॉग्स नो एग्रेसिव आउटबर्स्ट्स जस्ट साइलेंस expressions and pure performance, and in those quiet moments we saw another Nana Patekar, vulnerable, restrained and deeply human.
2: बिल्कुल श्रोताओं यही उनकी अदाकारी की असली रेंज थी वे दर्शकों को एक ही फिल्म में डर उत्साह और हंसी महसूस करा सकते थे और अगले ही पल उन्हें किसी किरदार के दर्द के साथ चुपचाप जोड़ सकते थे
3: सॉरी सर मैं तो एक्साइटमेंट में आकर
4: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या कहां बैठा हूं किससे बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं समझ में नहीं कंट्रोल कंट्रोल उदय
0: Over the decades, Nana Patekar became much more than a familiar face in Indian cinema. He became a presence, a voice, a style of acting that belonged unmistakably to him.
2: उनके अदाकारी में गुस्सा था बगावत थी हास्य था दर्द था और कमजोरी भी वे गैंगस्टर बने सैनिक बने पुलिस अधिकारी बने पिता बने और कॉमेडी किरदारों में भी नजर आए लेकिन हर भूमिका में वे अपनी एक अलग सच्चाई लेकर आए ऐसी सच्चाई जिसे दर्शक तुरंत महसूस कर लेते थे
0: And his later appearances may have become fewer, but the impact of his earlier work never really faded. And even in his recent films, including Vanvas, Houseful 5, Subedar, and Oh Romeo, audiences continue to recognize that unmistakable Nana Patekar stamp.
2: 1978 में गमन से शुरू हुई उनकी फिल्मी यात्रा करीब 5 दशकों तक चली इस लंबे सफर ने एक बात साबित कर दी एक यादगार स्टार बनने के लिए पारंपरिक हीरो जैसा दिखना जरूरी नहीं जरूरी है कि आपके पास अपनी एक आवाज हो अपना एक अंदाज हो और किरदार को सच बना देने की क्षमता हो
0: Yes, and to conclude our discussion today, Vaishnavi, Nana Patekar may have taken his final bow, but the characters he brought to life, the dialogues he made memorable, And the emotions evoked will continue to live on.
2: और ये भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज को विदाई है एक ऐसे अभिनेता को जिसने अपने लिए कोई तय सांचा स्वीकार नहीं किया और अपनी शर्तों पर अपनी अलग पहचान बनाई नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि एक ऐसे कलाकार को जिसे भारतीय सिनेमा और उसके दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे उनकी विरासत हमेशा बनी रहेगी

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेली

0: कॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषध कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
2: நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்பதற்கு முன்
4: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 31.1% विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% का योगदान देता है। देश में एमएसएमई क्षेत्र का औपचारिक आधार भी लगातार बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर 2026 तक उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर करीब 9,78,00,000 एमएसएमई पंजीकरण दर्ज किए गए। इन पंजीकृत उद्यमों ने करीब 43,28,00,000 रोजगार के अवसरों की जानकारी दी है। इस पूरे क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। करीब 37.6% उद्यम महिला स्वामित्व वाले हैं। एमएसएमई क्षेत्र केवल एक तरह के कारोबार तक सीमित नहीं है। पंजीकृत उद्यमों में करीब 4,08,00,000 कारोबार व्यापार से जुड़े हैं। इसके बाद करीब 3,77,00,000 सेवा क्षेत्र और 1,93,00,000 विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्यम हैं। यानी एमएसएमई क्षेत्र देश के व्यापार, सेवा और विनिर्माण तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि इनमें से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से विकास पूंजी की जरूरत क्यों है। भारत में किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में निवेश और सालाना कारोबार के आधार पर रखा जाता है। वर्ष 2025 से लागू नए मानकों के अनुसार छोटे उद्यम के लिए निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए तक है। मध्यम उद्यम के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपए तक है। इन उद्यम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कारोबार आगे तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन कारोबार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केवल रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा होना पर्याप्त नहीं होता। यहीं पर एसएमई ग्रोथ फंड की भूमिका सामने आती है। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता देगी। ये फंड सीधे छोटे और मध्यम उद्यमों में इक्विटी निवेश करेगा। इक्विटी निवेश का अर्थ है किसी कंपनी में पूंजी लगाकर उसके कारोबार में हिस्सेदारी लेना। इसमें पैसा देने वाला कंपनी के विकास में हिस्सेदार बनता है, इसलिए ये सामान्य कर्ज से अलग होता है जहां पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं करना होता। इस तंत्र को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरल भाषा में समझें तो AIF ऐसे निजी रूप से बनाया गया फंड है जिसमें निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और तय नीति के अनुसार अलग अलग कारोबार में किया जाता है। इसका एक बड़ा ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। फंड की बड़ी हिस्सेदारी छोटे और मध्यम विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने में लगाई जाएगी। इस पूंजी से कंपनियां नए और बेहतर तकनीक अपना सकती हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और निर्यात के लिए अपनी क्षमता मजबूत कर सकती हैं। फंड का ध्यान केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। औद्योगिक क्लस्टर वाले दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्यम भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे उन क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार हो सकता है जहां पहले से कारोबार और उत्पादन की गतिविधियां मौजूद हैं। इसके साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
1: श्रोताओं, किसी उद्यम को पूंजी मिलना उसके विकास की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसका असली असर तब दिखाई देता है जब वे पूंजी उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने, कारोबार का विस्तार करने और रोजगार पैदा करने में बदलती है। एसएमई ग्रोथ फंड से भी यही उम्मीद है कि विकास की क्षमता रखने वाले उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और वे अपने क्षेत्र में मजबूत कंपनियों के रूप में उभर सकें। आइए अब समझते हैं कि इसका असर नवाचार, कारोबार के विस्तार और रोजगार पर कैसे पड़ सकता है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की दूसरी सहायता व्यवस्थाएं इसके साथ किस तरह जुड़ती हैं।
0: एसएमई ग्रोथ फंड से मिलने वाली विकास पूंजी का असर केवल कंपनियों के आकार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका संबंध नई तकनीक, उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा और रोजगार से भी है। जब किसी उद्यम को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए पूंजी मिलती है तो वे नई मशीनें लगा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकता है और नई तकनीक अपना सकता है। इससे उसके काम करने का तरीका बेहतर होगा और वह बाजार में अधिक मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में इसका असर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रूप में दिखाई दे सकता है। किसी कंपनी के पास अधिक उत्पादन करने की क्षमता होगी तो वे नए बाजारों में पहुंच बनाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया का असर रोजगार पर भी पड़ता है। जब कोई उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता और कारोबार बढ़ाता है तो उसे अधिक लोगों की जरूरत होती है। इस तरह के कारोबार के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं, लेकिन किसी छोटे या मध्यम उद्यम के विकास के लिए ऋण, कौशल, तकनीक, बाजार, खरीद के अवसर और कारोबार चलाने में दूसरी तरह की सहायता की भी जरूरत होती है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की सहायता व्यवस्था कई अलग अलग हिस्सों में काम करती है। वित्तीय सहायता की बात करें तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी CGTMSE छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समर्थन देता है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों के लिए ऋण तक पहुँच को आसान बनाना है। रोजगार और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स

0: एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम काम करता है। इसका जोर नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्यमों को बढ़ावा देने पर है। वहीं पीएम विश्वकर्मा के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ कई तरह की सहायता देने का प्रयास किया गया है। इससे उनके काम से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण, उपकरण और कारोबार से जुड़ा सहयोग शामिल है। कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में एमएसएमई स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम काम करते हैं। इनका उद्देश्य लोगों में कौशल और उद्यम शुरू करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए तकनीक और उत्पादन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी आरएएमपी कार्यक्रम एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है। इसी तरह जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना का जोर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी एमएसएमई को तकनीकी सुविधाओं और तकनीक से जुड़ी सहायता देने में भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई के लिए बाजार तक पहुंच भी उतनी जरूरी है। एमएसएमई संबंध और एससीएसटी हब जैसे प्रयास सरकारी खरीद और बाजार के अवसरों से जुड़ने में सहायता देने पर केंद्रित हैं। इस तरह देखा जाए तो एसएमई ग्रोथ फंड केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, ये छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाना केवल उनके कारोबार का विस्तार करना नहीं है, इसका मतलब है नई उत्पादन क्षमता, नए रोजगार, नई तकनीक और नए बाजारों के लिए रास्ते तैयार करना। एसएमई ग्रोथ फंड और एमएसएमई क्षेत्र के लिए चल रहे दूसरे प्रयास इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इनका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में उद्यमों की क्षमता को मजबूत करना और विकास के अवसरों को ज्यादा व्यापक बनाना है। यही प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की अपनी उत्पादन और कारोबारी क्षमता को मजबूत करते हैं और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक प्रीति श्रीवास्तव।

अभी आप सुन रहे थे विश्लेषण। अब आपको बता दें 6:30 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्र, 7 होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 में होंगे अंग्रेजी में समाचार, और अब से कुछ ही देर में यानी 6:20 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार।

वर्षे पुरस्काररूपेण द्वादश मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिता धनराशि प्रदास्यते। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण इथोपिया देशस्य नूतन विदेशमन्त्रिपदे नियुक्ताय गेडियोन तिमोटियोस हेसेबोन महोदयाय हार्दाः शुभाशयाः सम्प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वसन्देशं प्रसारयन् विदेशमन्त्री प्रोक्तवान् यत् सः भारत इतोपिया देशयोः रणनीतिक सहयोगम् अधिकं सुदृढं विधातुं कटिबद्धः अस्ति। अनेन द्विपक्षीय सम्बन्धानां नूतनः अध्यायः प्रारप्स्यते। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः अद्य प्रातः गोवा राज्ये स्वीय गृहे तीव्र हृदय रोग घातेन 75 वयसि दिवंगतः। हिंदी मराठी चलचित्र क्षेत्रेषु सुदीर्घ कालं यावत् परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी, अब तक 56, वेलकम इत्यादि नाम अनेक कलाकृतीनां माध्यमेन स्वकीयां अनुपमां प्रतिष्ठां अंकितवान् एषः महान् कलाकारः। अस्मिन् असामायिक निधने राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः च गभीरं दुःखं प्रकटितवन्तः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां भारतेन आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य कपट नीति तीव्रतया आक्षिप्ता। भारतेन प्रतिपादितं यत् जैश ए मोहम्मद इत्यादंकी संघटनस्य प्रमुखस्य मसूद अजहरस्य विषये सूचनायै पुरस्कार घोषणां कृत्वा इस्लामाबाद प्रशासनं स्वस्य आतंकवाद समर्थनं आच्छादयितुं प्रयतते। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् विश्व समुदायेन 9/11, 26/11 अथ च पहलगाम आक्रमणानां संहारः नैव विस्मृतः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां स्वस्य प्रत्युत्तराधिकारस्य प्रयोगं कुर्वन् भारतस्य प्रथम सचिवः रघुपुरी अवोचत् यत् केवलं घोषणाभिः आतंकवादः पराजेतुं नैव शक्यः। सः आतंकवादस्य दुष्कर्मकारिणां वित्तपोषकाणां अथ आश्रयदातॄणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय आह्वानं विहितवान् इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: निखिल और गौरा, आप दोनों को गुड इवनिंग।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मैं गौरा।
0: थैंक यू निखिल एंड वंस अगेन सिद्धार्थ, वेलकम टू द प्रोग्राम। Listeners, let's begin with a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest power of tax officers, raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई। मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल।

0: and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनको इनके पीछे क्या रहे, और दूसरा ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाज़ार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाज़ार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाज़ार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है। चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, क्रूड ऑयल के प्राइजेज अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है। कल RBI ने भी रिवाइज़ की है, अपवर्ड रिवाइज़ की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाज़ार पे जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाज़ार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हाँ, बाज़ार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाज़ार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल मैं कहूँ इस तरह के, और जो और ख़ासकर ये सब बाहर में देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है, ये जल्दी सॉल्यूशन होगा, ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप ज़रूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
0: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, वी थिंक इट्स अ फॉलिंग मार्केट एंड इट विल बिकम अ राइजिंग मार्केट। एक्चुअली अ फॉलिंग मार्केट कुड फॉल फर्दर, कुड स्टे देयर, टेक्स टाइम टू बिकम अ

0: So I think anybody who's buying in a falling market should actually be there at least for a little longer period than one would, you know, really expect markets to immediately rebound.
1: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52-week low now. A lot of them, almost on their one-year lows. But the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said, first, invest in very, very small tranches, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks. And the gestation of a return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind. Plus also the levels going further down is not ruled out at all.
0: Right. So, you know, we have global crude oil prices, they're rising. That's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, you know, tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
1: See, basically what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
0: Right.
1: And our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
2: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने FIIs के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, DIIs हैं, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ, ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
1: नहीं निखिल, देखिए, अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो अब वो एक, और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के. और जहाँ तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूँगा. देखिए, FIIs के पास का जो एक जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है, वो होता है प्रॉफिट इज़ देयर मोटिव. तो वो ऑब्वियसली, उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज़्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं. दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट, दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं.
2: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट दिखी. हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया.
1: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है, वो जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है. मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो देर इज़ जनरल फॉल इन द मार्केट.
2: आगे बढ़ते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है. इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. वॉल स्ट्रीट में गिरावट के बाद आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 3.5% गिर गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजारों की बात करें तो जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 1% नीचे आकर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.4% के नुकसान में था. सिद्धार्थ, हमने देखा वॉल स्ट्रीट में भी गिरावट आई और एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे संसार का जो मार्केट है गिरावट के दौर से ही गुजर रहा है.
1: हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एक अनिश्चितता है. क्रूड ऑयल उसका बड़ा कारण है. क्रूड ऑयल के जो भाव में तेजी है, साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो महंगाई का प्रेशर बना हुआ है, तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक सभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको बाजार में दिख रहा है. और ये ऐसा हुआ जो आपने बोला कि हमने देखा कि

0: they are changed are also come into effect on April 1. So I think in a way we are trying to align both the, and also I would say simplifying the processes for the taxpayer, for the business community.
1: So alignment and simplification, I think these are two critical things.
2: Siddharth, ये जो दो फैसले लिए गए हैं GST Council की तरफ से, इसमें एक आम listener के नजरिए से अगर समझने की कोशिश करें तो आम उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, और दूसरा छोटे व्यापारी और जो MSME में काम करते हैं उनके लिए इनमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या उन पर कोई असर पड़ेगा, तमाम चीजें इसमें

0: ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की। श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले, साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, तमाम कोशिशें इसी चीज़ को लेकर हैं।
1: इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमसे जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा। और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और कैसे उसका हम जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी ज़िंदगी को रोज़ छुएगा और छू रहा है, तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेज़ी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
2: राइट, एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, I think it's important the earlier we start the better.
1: Yeah, because I think yes, though we have education, obviously everybody is, most of the people here have now access to education, still people are being cheated on these lines. So I think government is taking
2: awareness
1: the right
2: is
1: step.
2: Right. Yeah. Absolutely. In our next story, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. So we are seeing, you know, whether it's the G20, whether it's BRICS, it's about, different countries coming together to work towards a common goal, and they're coming together not only on big mega issues, but even smaller little things. And I think that's where cohesion, you'd earlier used two words for the GST, which is, you know, alignment and synchronicity, I think is working globally.
1: Yeah, I think, and obviously, though we have issue with United States as far as our trade pact, which is still pending, and as we have been hearing lately from the ministers that it's not in sight, but something like that, this where we are trying to, 15 countries trying to come together to address structural excess capacity, production and curb non-market policies, I think it's a very positive step, especially in these times when there is uncertainty in the world.
2: Right.
0: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए इसमें कोई भी मासिक कोटा, भुगतान की सीमा या फिर अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को और किसी भी दुकानदार को बिना किसी सीमा या शुल्क के भुगतान कर सकते हैं।
2: Crude oil. Global crude oil prices rose sharply today amid persistent worries about supply from West Asia. Brent crude was trading 4.5% up at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 4.5% higher at $92.25 per barrel at the time of writing this report. Your comments, Siddharth, on crude. Should we look at 100 as the oscillating figure and to and fro from that?
1: Yeah, because except in very small, I think for a small brief period when we had seen a fall in crude oil prices, I think the prices have been hovering around $100. Today, the world over, I think because after around $104 per barrel, I think that is what is shaking the markets all across the globe. So I think this is the new normal. And also another challenge is going to be the supplies. Because of the uncertainty, the attacks happening and supply constraints still persisting in the Strait of Hormuz. So I think, and this is single biggest reason for price
2: the
1: rise, inflation.
2: Rising. So it's interesting, when crude oil prices

0: rise, the sentiment goes, and you know, we can see markets responding and people tightening their fiscal and their fiscal and monetary policies. But also, when crude oil prices fall, the result is not so fast to see.
1: Yes, I agree. And obviously, because you would have also suffered for a long time with these kind of high prices. If you look at India,
0: it takes time.
1: Yeah, if you look at a country like India, which imports almost 90% of its energy, we have, till now, the government of the day has absorbed most of the prices.
0: Right.
1: Price rise.
0: Right.
2: Aur aage badhte hain. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ 1,47,646 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 0.7% लुढ़ककर 2,17,106 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई थी। सिद्धार्थ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: निखिल और गौरा, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1.5%, सेंसेक्स स्लम्प्स ओवर 1000 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 22,250, जीएसटी काउंसिल रिमूव्स अरेस्ट पावर्स ऑफ टैक्स ऑफिसर्स, रेजेस थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीज, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ओवर 4%. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को

0: डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. GST Council has removed power of arrest of tax officers and the Council has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and proportionate penalty. Addressing media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold. Finance Minister said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare sarkare technology companies telecom operators sabhi ko is framework se judna मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: Electronics and IT Minister Ashwin Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security benefits, and

இனப்படை நின்று இசை பாடவும் ஆடுமா?

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद में मुकदमा चलाने की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: कर फाइलें में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। अब 10,000 रुपए की मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और 10,000 रुपए से कम के लंबित नोटिस को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा।

0: 42 पूर्व न्यायाधीशों ने भारत की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इस सबके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और यहां तक कि उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। पत्र में चिंता व्यक्त की गई कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राजघाट पर जारी विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ प्रमुख मार्गों पर बसों और भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे लागू रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार इन वाहनों को एनएस मार्ग और लाल किले की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली गेट की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मनेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The GST Council has removed power of arrest of tax officers and has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The decision was taken during the 57th meeting of the council in New Delhi today. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing media following the meeting this evening, Finance Minister Nirmala Sitharaman said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said, India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said, the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deepfakes kitni badi chunauti ban chuki hai, ye bhi hum dekh rahe hain. Isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkare, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: 42 former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The letter highlighted that the special intensive revision of electoral rules is valid under Section 21(3) of the Representation of the People Act 1950. They pointed out that the last SIR was completed about 2 decades back and no one called those revisions a conspiracy. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after

0: Releasing the World Development Report 2026, the promise of artificial intelligence today, Mr. Vaishnaw said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity, benefits, and potential harms. The Central Bureau of Investigation, CBI, has busted an impersonation and cheating network operating across Delhi, Bihar, Haryana, and West Bengal, allegedly involved in a banking recruitment racket. It also arrested four key operatives, including a CGST inspector, in the case. An FIR was filed in the matter on the complaint of Institute of Banking Personnel Selection. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. Making the announcement, the Swedish Academy in Stockholm said the author has been honored for her bold and inventive ode that, in playful dialogue with the classical tradition, which created new forms for contemporary literature. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu saw off Japan's Riko Gunji to advance to the quarterfinals of women's singles, but it was curtains for the Indian men's singles player at Arctic Open Super 500 tournament in Vantaa, Finland today. And with that, we end this news bulletin.
1: நேரம் 8:10. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு. நேயர்கள் இனி கேட்கலாம். மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டு பணி வரை, டெல்லி செய்திப்பிரிவு வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
2: आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार, और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में, और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो, या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो, या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हों। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है, और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
4: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट, आपको उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप, तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड भी 5 साल, कुड भी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
3: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
4: जी
3: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
5: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
3: जी
5: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर वो अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा।
3: बिल्कुल,
5: 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर

0: Depending on the program, depending on the initiative, it takes different period of time to see the impact. Like, you know, a good benchmark is, I agree with sir, that 5 years is a good benchmark for many of the initiatives that will and have changed the ease of living for our families.
1: Okay.
0: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं?
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
2: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज़्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रह के आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
1: एक होलिस्टिक
2: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी।
1: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
2: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गाँव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पर कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ, आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था।
1: जी।
2: इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान हैं, उस पे ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहाँ सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में। तो ऐसा नहीं घर केवल उनके लिए, अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं हम कैसे रह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक

0: अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक,
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है, और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट्स हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरे ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने किताबें में पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी, निहार का जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का

0: मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
1: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया उसी घर की तो दशा उसी दिन बदल गई। अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%, 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाले। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़ अमेरिका 33 ब्राजील 21 और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-7 साल के अंतर अमेरिका इंग्लैंड ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड्स, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
0: जी,
1: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
0: जी,
1: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
0: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
1: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
0: जी,
1: ठीक है, आइडिया बन जाता है वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाया, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूँगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
0: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो।

0: राइट
1: जी।
0: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले, आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूँ तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए, कुछ चीजें समझने के, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
0: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहाँ पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग अलग नजरियों
0: दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
0: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे, सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जनता
0: की कैटेगरी में, तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना, इन पेशेंट इलाज होना, और पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े,

0: जी,
1: ये उसका मेन पर्पस है। आप सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
0: जी,
1: इतने लोग। और वो किस तरह से, इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
0: जी।
1: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल है उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
1: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
0: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से,
1: इन स्कीमों से। ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
0: जी,
1: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन

0: तीन साल में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना। जाइए वहाँ पे, जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए। वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
1: जी।
2: और आम आदमी की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की ज़िंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: நேயர்கள், இதுவரை மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டுப் பணி வரை டெல்லி செய்திப்பிரிவு வழங்கிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார். वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
4: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल

0: टीम वर्क पर काम करें, सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी

0: के हर कर्मी की सराहना की।
1: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
2: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के

0: लिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें जो बहुत ही आवश्यक होती है। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
2: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और

0: समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पे जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है?
0: ये बहुत ही अहम मुद्दा है। न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत हम पहले 1000 दिनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के, और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास की हैं। इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं, और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी काम, चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष हैं, सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में। उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है का, जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण हैं जैसे कि स्टंटिंग, जिसमें जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर, और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए, और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जिसे कहते हैं रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
0: श्री अन्न, जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं, वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस, गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इंटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं। उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात है, या फिर छोटी बच्चियों की बात हो, या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खान पान की क्या भूमिका है, और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग, या कम से कम बच्चियां, या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों?
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए अनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी जिसे कहते हैं हम आमाशा में, और या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि

0: हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है, और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है, मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन सी, काफी विटामिन्स का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं, कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का, जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है।
1: जी
0: और उसके साथ विटामिन सी वाली चीज चीजें, अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में है, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टैबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में 2 बार खाना होता है, तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते शायद
1: जी
0: उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है, तो गोली का भी अपना महत्व है, और साथ में एक संपूर्ण आहार
1: जी
0: इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो, या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए?
0: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, खाने की
1: जी
0: बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल हैं, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल हैं, और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं, वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें, और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें, और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी 1/3 अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं, और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है। बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर
1: जी
0: युक्त, जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का और बहुत उसका, उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें। खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें, और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है
1: जी
0: और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है, जो कि
1: जी
0: बिल्कुल संभव है।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के

0: समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: कंट्री वाइड

0: अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातित जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने के उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्लसन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरुगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देशभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। पीवी सिंधु आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The GST Council, during its 57th

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता। इटली की संसद ने देश की चुनाव प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
1: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मोबाइल फोन केवल आधुनिक संचार का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है। भारत और रूस ने आज रक्षा क्षेत्र में भारत रूस सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग और सह उत्पादन तथा सह विकास पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। सैन्य तकनीकी सहयोग और रक्षा उद्योग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 24वीं कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9 सितंबर 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयर्स S4 के सह अध्यक्ष के तौर पर जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों तथा काला सागर

0: में पिछले कुछ दिनों में व्यावसायिक जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि समुद्री व्यापार में बाधा डालने वाली और निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ये हरकतें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली की संसद ने आज देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिणपंथी गठबंधन की चुनावी संभावना को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस उधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के अधिकारियों ने आज जारी किए गए नए अभियोग में यातना और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से जूझ रहे इस सत्तावादी नेता पर दबाव और बढ़ गया है। मादुरो पर पहले अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब मादुरो तेल समृद्ध दक्षिण अमरीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने शासनकाल के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा कराकस स्थित घर से आधी रात को छापेमारी करके गिरफ्तार किए जाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जनवरी की शुरुआत से न्यूयॉर्क की जेल में हैं। दोनों ने अपने और कई कथित सहसाजिशकर्ताओं के खिलाफ वर्षों पहले शुरू किए गए आपराधिक मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डी फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता है। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headline.

0: The time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.

0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer

0: over 4%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट, सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई, मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल।

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे, और दूसरा ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाजार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाजार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है, चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो। क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है। कल RBI ने भी रिवाइज़ की है, अपवर्ड रिवाइज़ की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाज़ार पर जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाज़ार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, हाँ, बाजार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाजार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल में कहूँ इस तरह के, और जो और खासकर ये सब बाहर में, देश के बाहर से के कारण है। हमारी

0: इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है, ये जल्दी सॉल्यूशन होगा, ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप ज़रूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
1: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, वी थिंक इट्स अ फॉलिंग मार्केट एंड इट विल बिकम अ राइजिंग मार्केट। एक्चुअली अ फॉलिंग मार्केट कुड फॉल फर्दर, कुड स्टे देयर, टेक्स टाइम टू बिकम अ, सो आई थिंक एनीबॉडी हु इज बाइंग इन अ फॉलिंग मार्केट शुड एक्चुअली बी देयर एटलीस्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड then one would really expect markets to immediately rebound.
0: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52 week low now, lot of them almost in on their 1 year lows, but the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said first invest in very very small tranches, very very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind. Plus also the levels going further down is not ruled out at all.
1: Right, so you know we have global crude oil prices, they're rising, that's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, you know, tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
0: See, basically what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
1: Right.
0: And our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
2: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने FIIs के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, DIIs है, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ, ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
0: नहीं निखिल, देखिए अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो वो एक, और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहां पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के। और जहां तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूंगा। देखिए FIIs के पास का जो एक, जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है, वो होता है प्रॉफिट इज देयर मोटिव। तो वो ऑब्वियसली, उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज़्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं। दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट, दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं।
2: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट देखी, हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया।
0: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो, जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है, मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो देयर इज जनरल फॉल इन द मार्केट।
2: आगे बढ़ते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है। आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 3.5% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की। श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले, साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। तमाम कोशिशें इसी चीज़ को लेकर हैं।
1: हाँ, इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा। और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और कैसे उसका हम जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी ज़िंदगी को रोज़ छुएगा और छू रहा है, तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेज़ी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
2: राइट, एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर।
1: या बिकॉज आई थिंक यस, दो वी हैव एजुकेशन, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव नाउ एक्सेस टू एजुकेशन, स्टिल पीपल आर बीइंग यू नो चीटेड ऑन दीज लाइन्स, सो आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप।
2: राइट, एब्सोल्युटली। इन आवर नेक्स्ट स्टोरी, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. So we are seeing, you know, whether it's the G20, whether it's BRICS, it's about, different countries coming together to work towards a common goal, and they're coming together not only on big mega issues, but even smaller little things. And I think that's where cohesion, you'd earlier used two words for the GST, which is, you know, alignment and synchronicity. I think it's working globally.
1: Yeah, I think, and obviously, though we have issue with United States as far as our trade pact, which is still pending, and as we have been hearing lately from the ministers that it's not in sight, but something like that, this where we are trying to, 15 countries trying to come together to address structural excess capacity, production, and curb non-market policies, I think it's a very positive step, especially in these times when there is uncertainty in the world.
2: Right.
0: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए इसमें कोई भी मासिक कोटा, भुगतान की सीमा या फिर अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को और किसी भी दुकानदार को बिना किसी सीमा या शुल्क के भुगतान कर सकते हैं।
2: Crude oil. Global crude oil prices rose sharply today amid persistent worries about supply from West Asia. Brent crude was trading 4.5% up at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 4.5% higher at $92.25 per barrel at the time of writing this report. Your comments, Siddharth, on crude. Should we look at 100 as the oscillating figure and to and fro from that?
1: Yeah, because except in very small, I think for a small brief period when we had seen a fall in crude oil prices, I think the prices have been hovering around $100 today. The world over, I think, because after around $104 per barrel, I think that is what is shaking the markets all across the globe. So I think this is the new normal, and also another challenge is going to be the supplies because of the uncertainty, the attacks happening and supply constraints still persisting in the Strait of Hormuz. So I think and this is single biggest reason for price rise, inflation.

0: rising. So it's interesting, you know, when crude oil prices rise, the sentiment goes, and you know, we can see markets responding and people tightening their fiscal and their fist and monetary policies. But also, when crude oil prices fall, the result is not so fast to see.
1: Yes, I agree. And obviously, because you would have also suffered for a long time with these kind of high prices. If you look at India,
0: it takes time.
1: Yeah, if you look at a country like India, which imports almost 90% of its energy, we have, till now, the government of the day has absorbed most of the prices.
0: Right.
1: Price rise.
0: Right.
2: और आगे बढ़ते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ 1,47,646 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत 0.7% लुढ़ककर 2,17,106 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई थी. सिद्धार्थ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद
1: निखिल और गौरा, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सिद्धार्थ. एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest powers of tax officers, raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: திரைகணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक.

0: है, फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। मौसम विभाग ने केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, केरल, माही, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की इरिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of

0: இதுவரை இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और धरुण मान्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Tea.

0: அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா, அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா. தினம் நீண்டாகவே அங்கு
1: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
3: From 25,000 to ₹10,000.
2: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
5: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। ये फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

0: டி எம் சவுந்தரராஜனின் குரலில் அடுத்த பாடல்.
1: ஐ ஐ ஐ ஐ நே

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to 10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो।

0: தாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। भारत की PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை உத்திரமேரூர் எஸ் செல்வம் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். மேல்சாணாங்குப்பம் எம் செல்வகுமார் அவர்கள் தவில். இன்னும் சில நொடிகளில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना।

0: सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमुखों से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आयोग ने संस्थानों के प्रमुखों को समान अवसर प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का और दिव्यांगजन विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश, शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती और छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति से संबंधित निर्धारित सांख्यिकी जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। उधर क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.